0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: निफी तुम्बाना फिरे ने इंसाने मिला फ्यूमानन मिला आदि मिला फिर इंसान अरसाय मतुंगने अंतुको ममुना फुलान तनुरा में अपिफन अंतनुरा इतु ना फिरे ने ना रपिच रवका पिच आओ के ना रोची फोफी तक आओ के ना रोच ला लोफ नुल फमिला म्यूमने ना रे मिला म्यूफने ना रे Ardina nina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuba ntifire nenti saye na rewa mandaya ndraikt mitruwe na rewa mandaya ndraikt aza metzara zara nyul na amdesa ka fivavan na amdesa ka fiavin na amdesa ka antuku politike marusha miafa faye na rewa ntupu nrapitu Madagascar
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.

0: तुम कुफा भी
1: रेफमिसी इन फितुराना चिलाकन फावका चिमेंची अम्म नारन नी फ्लारंबे जेट चिंतुना बस फ्लारंबे आरात सचापन रोने फावे चिनी तिन फितुराना रोती फितुगुनियाल निर्जन निनाम बुफुल्टोला रावो निदन संदालबेन फावका अमनालिन मार्टेस अनेचने तुकुन फनेर चेत्रे नरोता मिसाई.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: तीम ने रसोम नी इसा तब कलू तीमंदीकेल तब का तीमंदीकेल तब का तीमंदीकेल इन्हें वाले फितुल अपन जाकर उन्हें समाई ता फाउला ने मिचा बचले चिर का पोका रिंग सारे ना मिले उल इसा ना लाव सो वो जो हम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरंभ ये फमिसा चाहूँ का मिचो याद का पोका वो तेजामी फाउला ने ताले फितुल अपन जाकर ना बिशोए अमान ले तेले स्टार्स पच्ची माना मिले वे चिरामान तो कुन्या पिन पिचेसन तार ने यम नुलना हम ने अमान ले उलना रे तेले स्टार्स पर चिर का पोका वे फाउलन तो कुन मंदिंग क्या मिचो माला कास मालो ना से सावन मिचा हम सो वचन ने कि तो फ्टो ना ये चिरु हम ने तब जावना तुम चुसी वे तेरा तेरे वे मंगो माना सुआ फाउक सेम फन मिलना तुम चिर तु Patukum tunggal saya nak lihat malah kasma lo nasi sama mie saya tu. Sangat ni tan seruan mana nulan siraman soye.